0: जैसे तुम बोल रही थी ना लता के लिए जो रोल मॉडल नूर जहां थी,
1: हाँ,
0: तो उसमें शुरू में जब गाना शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे नूर जहां टाइप की
1: गा रही है, या हर वॉइस वाज वेरी सिमिलर
0: एंड इंटरेस्टिंगली बोथ नूर जहां एंड लता दे आर द लाइक दे वर बोर्न इन द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. आई थिंक दे लिसन टू नोट्स एंड म्यूजिक ऑल द टाइम एंड दे यू नो दे अचीव एक्सेलेंस रीच लाइक सुपर्ब हाइट्स.
1: So yeah, moving on, listeners, today's songs I have chosen all different singers, so no two songs have the same singer. So the next song I chose is from song sung by Geeta Dutt. Geeta Dutt was again such a great playback singer, again started in the early 50s. Or late 40s maybe, and she has a different voice, a different tone, different sur compared to Lata Mangeshkar and Noor Jahan. Her voice seemed more like kind of a playful, upbeat kind of voice and little bit of a nasal twang, but she gave us so many beautiful songs from the 1950s to the 1970s. So let's hear the song I chose of Geeta Dutt is from a movie 12 O'Clock.

0: तो हाँ, ये बहुत ही सुंदर गाना था गीता दत्त जी का, और मूवी थी 12 o'clock. आई वंडर वॉट द मूवी वॉज अबाउट. आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड अबाउट दिस मूवी बिफोर और सीन इट, बट इट इज इंट्रीगिंग.
1: राइट राइट. एंड आई थिंक यू नो, गीता दत्त के बारे में कुछ ना बोलूं दो लाइन तो बड़ा बेइंसाफी होगी. तो शी वॉज लाइक बॉर्न टू इज जमींदार फैमिली वॉज नाउ इन बांग्लादेश. दे मूव टू असम एंड वेस्ट बंगाल. जमींदार मीन्स जमींदार फैमिली से देन दे मूव यू नो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और बिफोर दैट. देन इट विकिपीडिया सेज दे मूव टू बॉम्बे इन ए स्मॉल फ्लैट. सो हाउ लाइफ चेंजेस. एंड शी वॉज वन ऑफ द 10 चिल्ड्रन. वॉज मैरिड टू गुरु दत्त एंड यू नो बोथ ऑफ देम डाइड वेरी यंग. So it's unfortunate, but she was a phenomenal, legendary singer who contributed so much to Hindi cinema and music.
0: Yeah, she had such a distinct voice. I love all her songs. All her songs were really popular and did really well. Unfortunately, we lose this great artist at a very young age, and but their songs live on with us forever. So Arun, let's mix things up a little bit. So when I send the message about request, I got a request from Dr. Ashok Shah, and then the next request from Charu. So Charu sent a request for this remix song of Ed Sheeran and Arjit Singh, and the record is called Sapphire.
1: Oh, Sapphire, like a chase sapphire, yeah. Card?
0: Or like the diamond. Ring, sapphire gemstone. So this is a request from Charu, sung by Arjit Singh and Ed Sheeran. Let's enjoy it. Thank you, Charu, for always coming up with great requests and songs which haven't been played before. So let's enjoy this song together with all our listeners.

0: right. Before we talk about this song, Arun, I have a message. This is a really important message from Anuradha Chander. And I just want to say, Rohan, Rian, and Arjun, they enjoyed the Ed Sheeran and Arjit Singh song, and they were listening to the Geet Mala. So thank you, Rohan, Rian, and Arjun. That's so sweet of you to listen to my show and enjoy the music. Keep tuned in when you visit Dadi and Nani.
1: And shout out to Anuradha and Satish for keeping and involving their grandkids in listening to music, Indian music, and make, you know, expanding their horizon, expanding their life and making it more colorful with different genres of music. Anyhow, ye movie jo gana tha na, Sonata, Silence. लेकिन इस जो गाने के जो बोल गुलजार के थे 1966 मूवी के, बहुत ही गहरे थे. जो यू नो सन्नाटे में भी कितनी गहरी बात कहा जाता है सन्नाटा. आई थिंक आई एम ट्राइंग टू बी पोएटिक, आई डोंट नो, बट एनी हाउ आई थिंक अगला गाना कौन सा सुनवा रही हो?
0: तो अगला गाना मैंने चुना है क्योंकि हम अलग अलग कलाकार का गाने, अलग अलग कलाकार के गाने सुना रहे हैं. ये पुराने जमाने से मैंने सुना है, चुना है शमशाद बेगम का गाना. तो ये गाना है, मूवी है बहार, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ वैजयंती माला. आई थिंक अगेन इट्स 1950s. सो दिस इज अ सॉन्ग संग बाय शमशाद बेगम, ओ परदेसिया.

0: Wow, Raviji, that was such a wonderful song, 1949 song. It just speaks about women activism, feminism. It's such a modern concept, just like you. So that was a great song. I've heard it before, but not in its full form. The words were so beautiful, and this is such an appropriate song to be played on your birthday.
1: And on this, you know, special farmaishi song wali ki jo list hai aaj, ye jo gana tha 1949 ki movie tha, aur iske jo likha tha Aziz Kashmiri ne, musician the, composer the, Vinod. He was a Punjabi Christian from Lahore.
0: Achha.
1: And sung by Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi. There are two sides they are saying. The third singer was either Mr. Durrani or Satish Batra. So it's conflicting. ये गाने के सुना तो है लारी लप्पा मींस डिले करता रहता है या यू नो
0: लारी लप्पा कमिट पर लाई रखता है
1: कमिट नहीं करता है तो बट सो दैट टाइप ऑफ ए मीनिंग एंड विद अ टीजर फॉर वुमेन टू इन द लास्ट स्टैंजा आई थिंक
0: इट वाज जुगलबंदी मेन एंड
1: वुमेन या टीजिंग ईच अदर एनी हाउ अगली फरमाइश किसकी है
0: तो अगली फरमाइश हमारे सुनने वाले हैं लंदन से सुन रहे हैं आई होप जागे हुए हैं पता नहीं क्या टाइम है पर आशा मल्होत्रा आशा जी जो लंदन में हैं उन्होंने फरमाइश दी है एक गजल की गजल गाई है मुन्नी बेगन ने तुम्हारे शहर में तो आशा जी आई होप यू आर एंजॉयिंग यू आर लिसनिंग टू गीतमाला आई डोंट नो विच शहर यू मीन वेदर यू मीन हाइड पार्क और पिकिप्सी और यू मीन आपका शहर मैनचेस्टर और लंदन तो मैंने भी ये गाना पहले सुना नहीं है ना ही ये गायिका का सुना है मुन्नी बेगम पर एनीवे सॉन्ग तो अच्छा होएगा ही आपने फरमाइश जो भेजी है तो सब सुनने वाले एंजॉय करते हैं ये प्यारी सी गजल

0: Lovely song. Sorry, Vijay ji, I read in between the lines. I thought your brother was visiting, but they are listening from Florida. So that's really nice. Thank you, Mickey and Judy from...
1: Shout out to you.
0: To tune in from Florida to Geetmala.
1: Very good. This song was written by Sahir Ludhianvi aur iske singer the S.T. Burman, Gaya Hemant Kumar. और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मनीषा, जो तुम गाने जो डाउनलोड करती हो ना, वो जो हैं जो फ़ोन पे डाउनलोड करती हूँ उनका वॉल्यूम डिफरेंट है. जो रिक्वेस्ट अगर आती है लाइव प्रोग्राम के टाइम, उनका थोड़ा वॉल्यूम पूरा उठता नहीं है ऊपर, पता नहीं थोड़ा सप्रेस रहता है.
0: आई थिंक इट वुड बी फ्रॉम वेयर आई एम पिकिंग द सॉन्ग, बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग इट ओवर हियर, बिकॉज आई एम इन अ रश टू मेक श्योर आई डोंट मेस अप, आई एम डाउनलोडिंग द सॉन्ग मे बी फ्रॉम not the original soundtrack. So I'll keep that in mind. But yeah, it was playing a little soft. But I hope it went in to our listeners and they could always crank up the volume on the radio or the computer to listen to it.
1: Yeah, but I'm sure a lot of people have remote in their hands or app on their phone to adjust the volume.
0: So agli farmaish hai Dr. Parashar se. Dr. Parashar, jo... गीतमाला के लॉन्ग लॉन्ग टाइम लिसनर, जो यहाँ पे आते भी थे और शो भी करते थे पद्मा जी के साथ, उन्होंने फरमाइश भेजी है 1947 मूवी दो भाई, और उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, अगेन संग बाय गीता रॉय स्लैश गीता

0: All right, Dr. Parashar, yeah, that was not really the best quality of the song, but...
1: हमें खेद है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वॉल्यूम अच्छा नहीं था. आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी हैव टू सी हाउ टू रिजॉल्व और प्रिवेंट दिस इश्यू फ्रॉम हैपनिंग अगेन.
0: यस, बट आई होप यू डिड एंजॉय लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग. द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ फरमाइश फ्रॉम मालिनी जी, मालिनी मेहता. दिस इज लता मंगेशकर सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मुझे जीने दो. And I really like this song, Malini ji too. I've heard this song, and yeah, we haven't played it that much. So thank you for requesting this song. I'm sure our listeners are going to enjoy it. It's a Wahida Rehman, I think, is in the movie. Wahida Rehman and Sunil Dutt.

0: So that was a melodious song, and it was a little soft, but I hope you guys could put on your increase the volume and enjoy the full song.
1: इस गाने के जो संगीत दिया था जयदेव का, जयदेव के गाने कभी कभी हम बजाते हैं. He didn't have a very long career, but he has created some excellent compositions. I think on that note, मैं आपको suggest करूँगा, मैं फरमाइश मेरी ये है, कभी जो different themes choose करती हूँ ना, कभी सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से, जैसे जयदेव के गाने एक बार
0: हाँ,
1: प्ले करो.
0: हाँ, वो किए हैं पहले हमने, तो हाँ जयदेव के भी करेंगे.
1: या शंकर जयकिशन.
0: We have lots of long way to go, lots of songs, treasure of geets for to play on geet mala.
1: Geet and sangeet.
0: बहुत ज्यादा मोती हैं जो गीत माला की माला में हम पिरो के अपने सुनने वालों को सुना सकते हैं.
1: गीतों और संगीतों की माला.
0: तो ये थी काफी सबकी फरमाइश आ गई. सो आई एम ग्लैड आई कुड गेट एवरीबडीज फरमाइश इन, एंड वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द शो. वी हैव 10 मोर मिनट्स. दिस नेक्स्ट सॉन्ग आई एम प्लेइंग इज अ सॉन्ग बाय अलका याग्निक. आई वॉन्टेड टू प्ले हर सॉन्ग बिकॉज जस्ट सॉ शी वॉज अवॉर्डेड द पद्माश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर सिंगिंग. So this is one of her solo songs. Many of her songs were duets, but I wanted to play one of her solo songs, and this is the iconic Madhuri Dixit song Ek Do Teen Char from the movie Tezab and sung by Alka Yagnik.

0: पर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें